अरे तू ना तू राव तू सब वही ने सरी हुए तुकना दा दाए दाते ने तोना तू अरे दाए दाते ने तोना तू तक का गिंदे तू दुनिया थवाले तुला मत दियते अनि तक को मी सरी हुए तक ते तू गारा ती तुंद वो तू ना ती दाए तू तू दुनिया कस्तो तिकतिये था आती का शल्ली के गुत्तिये उम्बा तो उशागी के एफ वे तू ना ती दा उम्बा रुक उन गरो योक उन अल्लाह योक दाए बरती नहीं है दाई था आती शक्ति नहीं आया वाजबा एक फायस्ते नहीं आया अरे वाजबा फायस्ते नहीं आया धैये को वाजबा फायस्ते नहीं आया उगवियो को वाजबा फायस्ते नहीं आया उस दिख हदीती नहीं आया फदारे शक्ति नहीं आया इम्बरे शक्ति एक लिवापती नहीं आना तक अंगर रहा अरे तू तू न तू राव हंसी को हरत दाती ना तू आई बिथाए किथा इधर न नोती है तू आड्डे बाड़ ना विकती है तेज ना को ओन और रिजगी उन्ने था बूने तीत अरे और जिक उदाई शक्ति नहीं अनुन उमागनाई कयकता यारे के एक न तुलुक में तू दाई था लाली दाह अतनियो लही तुबारा दाई था याती विदाए उन्ने तिलह नहीं हो इशालिकन उन उधई इन यारे हरामे गिरिशी रिब्बिये निंबरा तिलह न होई रबकात एकाती बेत तुनाती दाए उन अल्लाद गिरिशियो खदीत का उतावा उहा लाली उंबरो रिशिद यारे योग दाह इतनिये का यारा दाई था आती विदाए लही तुबारोक अंफ एनोक लही तुबारोक इराशिद नोक लही दाए विद एनोक अरे यारे के एक ना दाई था आती बदन्ने एक लही तलेज बित का इतिये उन्ने बिड़गी लावे कतीनो ओ धे एशुइन गरोयो एशुइन आन बेत तुनाती द इन हिनिन दाई ना निसरी ओकना ला दाए बदाए न्या दोकना और दाए बदाए न्या दोक उधाउन तु बिड़ावी उनु धे मीन का एम बली वेदना आओ बसंको और का गिंदे जाहिला आयत लीली हुआ तेफो औरे उगा बात हुआ दुनिया दम रमा तीफियन गीकत मितिया मेरी इते दिन उम्बा तू नाना तु तिंदेक उत्तु दुनिया है शायदारू गिधो ए भी आन अरे गिधो ए भी तो ननून हर एक का सकिया बेत तो नाती दा उन्हों धई आन उन वो मरुकना शाले को गुदी एक शाले के एक शाले को बालगने के ने सगुर तमुन सरमास तमुन सने नहीं कितने इन बते दाई था आती हुआ दाई तुम आमलाती हुआ दामना यो लहित लहित दाई था आती जन्नत दाने बेत तो नाती दा इन्हें दाई ना निसरी वो कना आंतू न तुषाबु बरेक न रंशित तोक न उम्बतो निसरी ओकना को एम बलिब ने दोक अरे मुसंको और बर्दो का किंदे आको उमी मशी ताबी हुआ शुके थरारा तू या तुगनी इप्थीं फायदे का मिलोती आने उम्बतो ना ना तु तिंदे उत्तू या छिब्बातो ना तु ओन ते भी उबका ए ओन तिंदे आको उम्बतो दाई न दाई नेडिये गे तू न उम्बतो अर्री वो दाई ना ना तिप दाई ने डेक तिंदिये का लहित ला दाई था तिप जन्नत नी मेरे तोना तुबे तोना ती दाई सीले ले हुआ दाम नहीं तित्ते नातेन आन ते नातेन इंबते ती दाई ते लहित ला ला तु जन्न ए दिन तेन इंबते सकने तोना तु ते न ते मक ने तीरे तोना तु होई नी सेगे तोना हिने न तोना ती दा दाई ने सरी ओकना तोन इंशाल्लाह हंग ओकना संगी आं तू जन्नती इंशाल्लाह रहन रहे समने बे तू नाती द दाई ने सरी ओकना इन भलियन दाई से ना करना तो गुनो खोई दीन ए ने निस्तिर ओकना ने

उदाउन तो बिड़ाऊ ये क्वती तिसनीने ना लिबाबा तिसनीने ना हेने ने ना ने ना एम बलीब निम्सियो दे ना दीम शाल्ला मिड्डा अफरहा दाई था आतिब दाई दिवातिब दाई तालिब दीम दानई बरे खेनन दाई ने सरी ओकना शाल्ला दाई ने तिमिरना हमसे हेने इंशाल्लाह है तुत्तु मुआमलाती व उदहीदाब कक आमल समेन उम्बतियो एम बलीब दिया नियत।

अरे तू ना तू राव तुशाबु भई ने सरी हुए तो ना ला दाएव दाते ने तो ना तू अवरे दाएव दाते ने तो ना तू तक का गिंदे तू दुनिया थवाले तुला मत दियते अनि तक को मी सर हुए तक ते तो गारा ती तु इंद वो तू ना ती दाए तू तू दुनिया कस्तो तिकतिये था आती का शल्ली के गुत्तिये उम्बा तो उशागी के एफ वे तू ना ती दा उम्बा रुक उन गरो योक उन अल्लाह योक दाए बरती नहीं है दाई था आती सकती नहीं आया वाजबाए फायस्ती नहीं आया अरे क्वाजबा फायस्ती नहीं आया धैये क्वाजबा फायस्ती नहीं आया उगवियो क्वाजबा फायस्ती नहीं आया उस दिख हदीती नहीं आया फदारे सकती नहीं आया इम्बरे सकती एक लिवापती नहीं आनत कित अंगर रहा अरे तू तू ना तू राव हंसी को हर अद्दा तिना तो आई बिथाए किथाए दन्ननोतिये तो आड़े बाड़ना विकतिये तेद ना को उन उरिजगी उन्ने थाबूने तीत अरे उरिजिक उदाई सकती नहीं अनुन उमागनाई कयकता यारे एक न तो लुकम तुदाई था लाली दा हाथनियो लही तुबारा दाई था आतिब दाए उन्ने तिलहन आई हो ऐशा लेकिन उन ऊधई इन यारे हरामे गिरिशी रिब्बिये निम्बरा तिलहन हुई रबकात एकाती बेत तुनाती दाए उन अल्लाद गिरिशियो खदीत का उतावा उहा लाली उम्बरो रिशिद यारे उग दहा इतनी एक यारा दाई था आतिब दाए लही तुबारोक अंफ एनोक लही तुबारोक इराशिद नोक लही दाए इत एनोक अरे यारे एक ना दाई था आतिब दन्येक लही तलेज बित का इत एवन नेत बिड़गी लाव कतीनो ओध है एशुइन उगरोयो एशुइन आन बेत तुनाती दा इन्हें दाई ना निसरी ओकना ला दाए बदाए न्याद ओकना और दाए बदाए न्याद ओक उधान तो बिड़ावी उन्हों दे मीन का एम्बली वेदना आओ बसंको और का गिंदे जाहिला है तलीली हुआ तेफो और उगा बात हुआ दुनिया दम रमा तीफियन बीकते मितिया मेरी इते दिन उम्बा तू नाना तु तिंदे उत्तु दुनिया हाशाइदारू गिधो ए भी आन अरे गिधो ए भी तो ननून हर एक का सकिया बेतुनाती द उनु धई आन उन वो मरुकना शाले को गुदिये शाले के शाले को बालगने के ने सगुर तमुन सरमास तमुन सने नहीं कितने इन बते दाई था आती हुआ दाई तुम आमलाती हुआ दामनायो लहित लहित दाई था आती जन्नत दाने बेतुनाती द इन्हें दाई ना निसरी वो कना आंतून तुषाबु बरेक न रंशित तोकन उम्बतो नि सरी ओकना को एम बलिब ने दोक अरे मुसंको और बर्दो का इंदिया को उमी मशी ताबी हुआ शू के थरारा तू या तुगनी इब्ती इंद फायदे का मिलोती आनें उम्बतो ना ना तु तिंदिया उत्तु ये शिबातो ना तु ओन तेबी उबका ए ओन तिंदिया को उम्बतो दाई न दाई नेडिये गे तू न उम्बतो अर्री वो दाई ने ना ना तिप दाई ने डिए तिंदिए का लहित ला दाई था तिप जन्नत निमेरे तोना तुबे तुनाती दाई सीले नहीं हुआ दाम नहीं तित्ते नातेन आन ते नातेन इम्बते ते दाई ते लहित ला ला तु जन्नत इदिन ते इम्बते सकने तोना तु ते न ते मक ने तीरे तोना तु होई निसेगे तोना हिने न तुनाती दा दाई ने निसरी ओकना तोन इंशाल्लाह हंग ओकना संगी आ तु जन्नत इंशाल्लाह रहन रे सम नहीं बे तुनाती दा दाई ने सरी ओकना इनी भलीएन दाएब से ना करना तो गुनो खोई दीन एने निस्तिर ओकना ने